0: सोमनीकिनो जघ्नेन कृणवन्तु विरते कुदीरा तदपूर्वं जक्ष्ममन्त प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम नमः शिवाय।
1: मापति महादेव के।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Parampara is our tradition. Parampara is our heritage. Parampara is about inspiring music as your day unfolds. Join Dave Ramsuchit on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, 5 to 7 AM for Parampara on Radio Jagriti 102.7 FM, A New Awakening.

आज की महफिल जनाब राज इलाहाबादी साहब की गजल से शुरू कर रहा हूं, और गजल से पहले यह कथा पेश है।

मम समस्त रोग प्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम्

जगत्रितय वज्रदेह रुद्रावतार लंकपुरी दहन उमा अमलमन उदधिबंधन दशशिर।

भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबंधन मोक्षणं कुरु कुरु शिरःशूलगुल्मशूलगुल्मशूल

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Sitaram, you are invited to join His Holiness, the Dharmacharya of the Republic of Trinidad and Tobago, Pandit Dr. Rampasad Parasram, every Wednesday from 12:30 to 1 p.m. on radio and TV Jagriti for the program Understanding Dharma, helping us lift ourselves from the mundane to the sublime, from turmoil to peace, from bondage to salvation. Understanding Dharma with our Dharmacharya, His Holiness Pandit Dr. Rampasad Parasram every Wednesday from 12:30 to 1 p.m. on radio and TV Jagriti.

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।